0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं, चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? SLASA Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. SLASA Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. SLASA, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
7: It's
8: music never sounded better.
9: Fazan 97.1 FM.
8: I love it.

0: Si ya tiene tera pat.
1: It's commercial time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM.
6: Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
7: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
8: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
7: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
8: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
7: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
8: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
9: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
7: Park Foods, जो नाम है मायार का।
10: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manish straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
11: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
10: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
11: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
10: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
12: You are listening 97.1 FM.
13: You are saying. We are playing
14: Fazan 97.1 FM.
15: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
16: 97.1 FM।
17: जबरदस्त,
12: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजा 97.1 FM पर।

0: कोई सितम खुद देखे है खफा कोई वफा भी करके है बुरा कोई ऐसा भी करता है भला कोई छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सवाल कोई दिन भी मेरे कटते नहीं है रातों में चमक ही नहीं
1: You are listening 97.1 FM.

0: We are Fazan 97.1 FM.
1: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: it's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715।
8: You are listening 97.1 FM।

नजम से गजल बन गई, तू रोजी बदलती रही, असर से दखल बन गई, शिकायतें बढ़ती रही, मोहब्बत ये जंग बन गई, जिंदगी चलती रही, तुझको खबर ही नहीं, कोई डरी नहीं तो लड़ भी नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं, तमाशे खत्म कर अभी, वो गलतियां गिनती गई, नफरतें बढ़ती गई, लोगों की सड़ती रही, शराब मुझे चढ़ती नहीं, मेरे आगे कभी किसी की भी चलती नहीं, शामें

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM,
1: आई लव इट.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्रे पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं। When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
8: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
9: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
8: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
9: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
8: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
9: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
8: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
9: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
8: टेस्ट भी वाइब भी।
10: You are listening 97.1 FM.
11: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
12: You are listening. We are playing
13: Faza 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के
6: ठहरिए जरा ये कमर्शियल तो सुन ले.
7: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
8: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए.
6: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं.
8: सलासा ट्यूशन सेंटर?
6: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है.
8: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता.
6: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है.
8: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ.
9: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231. कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा.
10: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
11: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
6: Commercial time.
7: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
8: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
7: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
8: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
7: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
8: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
7: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
9: फ्रॉम 12:30 PM to 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
7: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
10: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
11: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
12: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
11: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
12: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
11: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
12: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
13: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
11: Park Foods, जो नाम है मायार का।
14: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioche straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
15: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
14: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
15: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
14: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
16: You are listening 97.1 FM.
17: You are staying. We are playing
18: Fazan 97.1 FM.
19: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
20: 97.1 FM।
16: You are listening 97.1 FM.

0: and you the one to blame. Beautiful
1: girls. ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट, मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: Planning a wedding, reception, or special celebration? Discover Excelsior Nawab, Nottingham's brand new renovated banqueting venue. A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
2: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
1: Fully air-conditioned, with modern kitchen facilities, a spacious foyer reception area, located just 1 mile from Nottingham City Center at 5 to 7 Lourdes Road, NG51EL.
2: Excelsior Nawab. Where your special moments become unforgettable.
3: This is a public service announcement.
4: Everybody. The station that plays
5: foot tapping music.
6: Hazar 97.1 FM.
7: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
2: फजान 97.1 FM,
1: आई लव इट।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंगम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
8: हजार 97.1 FM।
9: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड
10: You are listening 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: आरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मज़ीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
8: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जी गुड लिसनर्स, हमारा आज का कोट ये कह रहा है कि आपको पूरी सीढ़ियां देखने की जरूरत नहीं है, बस आपको जरूरत है इस चीज की कि आप यकीन के साथ अपना पहला कदम बढ़ाएं। अक्सर मंडे को हम क्या एक अजीब सी फीलिंग्स सोच रहे होते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में ये सब चल रहा होता है कि उफ, एक नया हफ्ता, इतना काम करना है, इस टारगेट को अचीव करना है, जिसे हम अगर हम अपनी जुबान में नॉर्मल इंग्लिश में कहें तो हम ओवरथिंकिंग कर रहे होते हैं। लेकिन लिसनर, जिंदगी को थोड़ा सा आसान बनाइए, और जून का महीना जैसे कि शुरू हो चुका है, इसका मतलब ये है कि आधा साल अभी गुजर चुका है। जो पहले 5 महीनों में हमसे ना हो सका उसकी फिक्र छोड़ दीजिए, जस्ट टेक अ वन न्यू स्टेप। तो आज का दिन बेहतर बनाइए, कोशिश करें कि आप आज से एक पॉजिटिव स्टार्ट लें, न्यू चीज़ों को स्टार्ट करें। आई नो चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होती हैं, समटाइम्स हम बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि आखिर हम किस तरह से स्टार्टअप लें, क्योंकि हम उस चीज़ को इस तरह से देख रहे होते हैं कि ये चीज़ बहुत बड़ी है और हम इसको नहीं कर पाएंगे। बट जस्ट ट्रस्ट मी, अगर आप एक स्टार्टअप लेंगे, जस्ट आप फर्स्ट स्टेप को देखेंगे तो आपके लिए वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। एंड आई नो जब आप स्लोली स्लोली प्रोग्रेस करते हैं तो आप बाय द टाइम आफ्टर फ्यू टाइम्स अपने मकसद तक, अपने गोल तक और अपने मिशन तक पहुंच जाते हैं। तो लिसनर्स, ये था हमारा आज का खूबसूरत सा कोट ऑफ द डे। उम्मीद करती हूँ कि हमारा आज का कोट आपको अच्छा लगा होगा। जैसा कि आज है मंडे, न्यू वीक न्यू स्टार्ट, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हमारा आज का कोट भी इस चीज से रिलेट करे कि किस तरह से आपने न्यू स्टार्ट लेना है। सो जब आपने न्यू स्टार्ट लेना है तो आपने फर्स्ट थिंग दैट कीप इन योर माइंड इज कि आपने आज के बारे में सोचना है। अगर आप आने वाले कल का सोचकर खुद को मेंटली एग्जॉस्ट कर लेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, तो आप कभी भी फर्स्ट स्टेप नहीं ले सकते। सो जरूरी ये है कि आप आज का सोचें किस तरह से आप अपने आज को बेहतर बनाएंगे, क्योंकि अगर आपका आज अच्छा होगा तभी आपका कल और आने वाला कल खूबसूरत होगा और प्यारा होगा। जी तो लिसनर्स, इसी तरह से गुफ्तगू का सिलसिला तो चलता रहेगा, क्योंकि हम और आप रहने वाले हैं अब से लेकर ठीक 2 घंटे तक साथ साथ। सो करेंगे बहुत सी गपशप, लाइट सी चिटचैट, लेकिन अभी वक्त हुआ है शो में एक अदद म्यूजिकल ब्रेक का, ताकि आप थोड़े से रिफ्रेश हो जाएं। सो सुनते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक, ट्रैक से वापसी पर यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे।

0: वेल लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये ट्रैक अच्छा लगा होगा. वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट्स द मोस्ट अंडररेटेड सॉन्ग, क्योंकि आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अवेयर ऑफ दिस सॉन्ग, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड है. बट ट्रस्ट मी, इसके लिरिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. पर्सनली रिसेंटली मैंने ये गाना सुना, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा. सो मैंने सोचा कि क्यों ना इस गाने को अपने तमाम तर लिस्टर्स के साथ भी शेयर किया जाए. अगर आपकी भी ऐसी कोई प्रेफरेंस है या फिर है कोई चॉइस जो आप चाहते हैं कि हम अपने इस शो में शामिल करें, सो आप हमसे शेयर कर सकते हैं. सिंपली आपने क्या करना है, जाना है हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो कि है 01157100971. वहां जाकर अपने नाम के साथ आप अपनी रिक्वेस्ट ऐड कर सकते हैं. सो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करूं और शो में वही तमाम तर सॉन्ग्स ऐड करूं जो आपको पसंद है. तो लिसनर, चलिए आइए थोड़ी ज़्यादा से इधर उधर की बात करते हैं, थोड़ा सा दिल को हल्का करते हैं. जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जून का महीना आते ही दिमाग में सबसे पहले एक चीज़ आती है कि एक तो गर्मी, ऊपर से ढेरों सारे काम. और वैसे भी आई थिंक सो कि गर्मियों का जो सीज़न है वो एक ऐसा सीज़न है कि इंसान कुछ ना भी कर रहा हो, कोई काम ना भी हो इंसान को, लेकिन वो ऑल द टाइम मेंटली एग्जॉस्ट रहता है और सबको गर्मी की वजह से ऑब्वियसली मूड ऑफ रहता है. सो इंसान ज़्यादा पैनिक कर रहा होता है कि उफ, एक तो मौसम ऐसा, ऊपर से ढेरों काम की लिस्ट. बट ट्रस्ट मी कि अगर आप जस्ट फोकस करें, जस्ट रिलैक्स करें और लिटिल बाय लिटिल छोटे स्टेप से स्टार्ट करें, तो आप कर सकते हैं. दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, बट आपको ज़रूरत होती है थोड़े से फोकस की, थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग की. सो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लोग जो पैनिक करते हैं, मैं उन तमाम तर लोगों के लिए यही कहूँगी कि पैनिक बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जब हम पैनिक करते हैं, हम ओवरथिंकिंग करते हैं, चीज़ों की हद से ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, सो उसका रिजल्ट हमारी वो टेंशन, हमारी वो ओवरथिंकिंग, हमारा वो पैनिक हमारे उस काम को आसान नहीं करता बल्कि और ज़्यादा मुश्किल बना देता है. सो आप अपने माइंड पर बिल्कुल भी स्ट्रेस ना डालें, ये चीज़ सोचें ही ना कि काम कितना बड़ा है या फिर आपका गोल, आपका मिशन कितना बड़ा है. बस आप सोचें कि आज के दिन मैंने ये काम करना है, मेरा आज के दिन का टारगेट ये है. और जब आप आज के दिन के टारगेट को पूरा करेंगे तो आई एम श्योर कि इस तरह करते करते आप अपने गोल तक तो पहुंच ही जाएंगे. जी तो लिसनर्स, अभी शो में वक्त हुआ है हमारे एक अदद कमर्शियल ब्रेक का. आई नो आप सोच रहे हो काफ़ी मोटिवेशनल बातें होगी. सो जी, इन मोटिवेशनल बातों के साथ उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन अच्छा जाएगा. सो चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानेब, क्योंकि कमर्शियल ब्रेक पर जाना भी ज़रूरी है. वैसे दिल तो नहीं कर रहा, क्योंकि जब गुफ्तगू बहुत अच्छी हो तो दिल करता है कि इंसान ठहर जाए, रुक जाए और बातें करता रहे. सो चलते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानेब, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार.
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
2: अटेंशन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड लेटिंग एजेंट्स, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं.
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है.
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता.
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल یونیورسل کریڈٹ والوں کے لیے 85% ڈسکاؤنٹ اویلیبل ہے.
3: پھر تو میں آج ہی ان سے رابطہ کرتا ہوں.
5: جی ہاں آج ہی رابطہ کیجیے سلاسا ٹیوشن سینٹر 07968046444 یا 01159168231. کچھ بن گئے آج تو کل کام آئے گا.
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: آپ سن رہے ہیں فضا 97.1 FM.
8: Radio station for people who love music. 97.1 FM.

वेलकम बैक माई लवली लिसनर्स, एक बार फिर से मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ैनब फातिमा। आप सभी को वेलकम करती हूँ आपके फेवरेट शो द टीवा डायलॉग विद रेडियो फजा 97.1 FM में। जी तो लिसनर्स, ये शॉर्ट सा मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन उन तमाम तर लिसनर्स के लिए जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है। तो मैंने सोचा एक बार फिर से बताती चलती हूँ कि 01157100971 है हमारा लाइव व्हाट्सएप नंबर। सो आप इस नंबर को जल्दी से सेव कर लीजिए ताकि आप हमसे इस नंबर के थ्रू रब्ता कर सकें, आपका और हमारा कनेक्शन इसी तरह से बहाल रहे और आप हमारे साथ लाइव शो में शामिल हो सके। जी तो लिसनर्स, हमेशा से दो तरह के बॉन्ड्स डिस्क्राइब किए गए हैं। कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें आप लोगों के बहुत करीब होते हो, बहुत पास होते हो, बट स्टिल आपके अंदर वो इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं होती, आप लोग उतने कनेक्टेड नहीं होते। और दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह के बॉन्ड्स होते हैं कि जहां आप लोग डेली बेसिस पर एक दूसरे के साथ नहीं होते हो, डेली बेसिस पर आना जाना नहीं होता, डेली बेसिस पर मिलना नहीं होता, बट स्टिल यू हैव द सेम बॉन्ड ऑल ऑफ द टाइम व्हेन यू मीट। सो मैं चाहती हूँ आपका और मेरा बॉन्ड भी कुछ इस तरह से हो कि अगरचे हम लोग फिजिकली एक दूसरे के साथ नहीं हैं बट इमोशनली कनेक्टेड हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे तमाम तर लिसनर्स की अगर कोई भी क्यूरीज हैं तो वो मुझसे शेयर करें। मुझे बताइए कि आपके आज के दिन के क्या गोल्स हैं, क्या प्लान्स हैं, और आप हर वीक के स्टार्ट पर क्या चीज़ें अपने माइंड में सोचते हैं, या फिर आपके माइंड में क्या चीज़ चल रही होती है कि आज मंडे है। मंडे के हवाले से आपके माइंड में जो जो तमाम तरह चीज़ें आती हैं वो आप सभी मुझसे शेयर करें। आपके फीडबैक का और आपके क्वेश्चंस का मुझे इंतज़ार रहेगा। जी तो लिसनर्स, हम आ चुके हैं अपने शो के उस सेगमेंट में जहां हम बात करते हैं मज़ेदार से खानों की, पकवान की, क्योंकि डीवा का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क यही होता है कि किस तरह से वो कम वक्त में अच्छा खाना बनाए और अपने फैमिली मेम्बर्स को खुश करे। क्योंकि डेली बेसिस पर अगर हम देखें तो हमारी जितनी भी फीमेल्स हैं, चाहे हों वो एशियन या फिर हों वो वेस्टर्न, सो सभी फीमेल्स के माइंड में ये एक चीज़ चल रही होती है कि अच्छा आज क्या खाने में बनाया जाए, क्या चीज़ ऐसी बनाई जाए, क्या कोई न्यू रेसिपी ट्राई की जाए जो घर में सभी को अच्छी लगे। क्योंकि हम एशियन फैमिलीज में क्या होता है कि घरों में एक जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम घर में दादा दादी होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं। सो हम जब भी कुकिंग करने लगते हैं या फिर कुछ भी न्यू ट्राई करने लगते हैं, सो द फर्स्ट थिंग दैट कीप्स इन अवर माइंड इज के अच्छा क्या बनाया जाए कि सबको अच्छा लगे, बड़ों को भी, बच्चों को भी। क्योंकि आजकल के बच्चे, आप सभी को मालूम है कि जेंजी अवाम बहुत ज़्यादा नखरे करती है, इनको हर चीज़ अपने मुताबिक चाहिए और ये देसी खानों से बहुत ज़्यादा भागते हैं। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अभी रिसेंटली ईद उल अज़हा गुजरी है, सो आई थिंक सो आप सभी गोश्त खा खा कर बोर हो चुके होंगे। क्योंकि आपको पता है कि ईद हो फिर दावतों का सिलसिला होता है, दावतें होती हैं, तो डेली बेसिस पर हम गोश्त से बने हुए पकवान खाते हैं, कहीं पर हम कबाब खा रहे हैं, कहीं पर हम यखनी वाला पुलाव, तो कहीं पर हम कोरमा। सो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी तमाम तरह डिवास के लिए आज कुछ थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा मुनफरिद लेकर आया जाए।

जी तो लिसनर्स, इसीलिए आज के हमारे स्पाइस किचन में कोई मटन नहीं, कोई बीफ नहीं बनेगा, बल्कि आज हम बनाएंगे कुछ ऐसा जो आपके स्टमक को हल्का सा सुकून देगा और टेस्ट बड्स को भी इंस्टेंटली रिफ्रेश कर देगा। सो आज की हमारी जो रेसिपीज हैं वो ज़रा हट के थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि जैसे कि हमारा जो एक पैटर्न चलता आ रहा है गोश्त वाला, मैंने सोचा कि उससे हट कर कुछ ऐसा बनाया जाए जो लाइट वेट हो बट ट्रस्ट मी टेस्ट में सबसे बेस्ट हो, और आई थिंक सो घर में बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, सभी को ये अच्छा लगेगा। और वैसे भी होता है ना कि जब हम बहुत सारा गोश्त खा लेते हैं तो हमारा माइंड, हमारी क्रेविंग्स कहती है कि अब कुछ डिफरेंट होना चाहिए। सो उसके लिए आज मैं आपके लिए जो रेसिपीज लेकर आई हूँ वो बहुत सिंपल सी हैं, झटपट बन जाएंगी, लेकिन अगर आप इनको मेरे स्टाइल में बनाएंगे तो आई थिंक आपको टेस्ट में वाजिया फ़र्क नज़र आएगा। तो दी लिसनर्स, हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी है चटपटे दाल चावल विद स्पाइस्ड ग्रीन चिलीज, और हमारी आज की सेकंड रेसिपी है कोल्ड एंड क्रीमी रशियन सैलेड। मैंने सोचा कि ज़रा गोश्त से हटकर, थोड़ा सब्जियों से भी हटकर हमें दालों को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि दालों में बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं, कैल्शियम होती हैं, और ये आपकी बॉडी को बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स देती हैं जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, और मोस्टली लोग क्या करते हैं कि इनको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम एशियन फैमिलीज थोड़ी सी गोश्त हो रोती हैं, हमारा दिल करता है कि क्यों ना खाने में बिरयानी हो, कोफ्ते हो, कबाब हो। सो जैसा कि अब आप तो कोफ्ते कबाब खा खा के बोर हो चुके होंगे, तो आज के लिए ये स्पाइसी दाल चावल बेस्ट रहेंगे। जी तो लिसनर्स, इन सभी की इंग्रेडिएंट्स आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन इतनी देर में आप कॉपी पेंसिल ढूंढ लें, तब तक के लिए एक म्यूजिकल ट्रैक सुनते हैं और ट्रैक से वापसी पर यहीं से कंटिन्यू करेंगे।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are playing
12: Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM।

जी तो लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपीज अच्छी लगी होंगी। अभी उठाई के फ़ोन 01157100971 है हमारा स्टूडियो का नंबर, सो आप इस नंबर पे जाकर मुझे जल्दी से बताइए कि क्या आप लोग अभी भी गोश्त खा रहे हैं या फिर मेरी तरह आप भी दाल चावल पर शिफ्ट हो चुके हैं। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब आप बहुत सारा गोश्त खा चुके हैं उसके बाद एकदम से जब आप दाल चावल खाते हैं ना, तो एक हेवन जैसी फीलिंग आती है। सो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इन रेसिपीज़ को और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी।

जी तो लिसनर्स, मुझे बताइए कि ज़िंदगी में समटाइम्स आप क्या करते हैं जब आप बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जैसा कि आज है मंडे, मंडे मींस न्यू गोल, न्यू वीक, न्यू एम्बिशंस। लेकिन जहाँ हम बात कर रहे हैं ढेर सारे कामों की, तो क्या हमें वहीं बात करनी चाहिए उन तमाम से चीज़ों की भी जो कि हमारे फ्री वक्त को, हमारे बोर्डम को दूर करें? क्योंकि इंसान को ज़रूरत होती है साथ ही साथ एंटरटेनमेंट की, साथ ही साथ काम की। अगर आप बस काम करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, तो आप हो जाएंगे बहुत ज़्यादा बोर। तो फिर उस बोरियत को दूर करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी? आपको ज़रूरत होगी साइड हसल्स की, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ की, जो कि आपके उस बोर्डम को ख़त्म करें। अच्छा, हर इंसान की डिफरेंट तरह की हॉबीज़ होती हैं। कुछ को म्यूज़िक का शौक़ होता है, तो कुछ को होता है पेंटिंग का। और फिर बात करें तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं मेरी तरह जिनको कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है।

0: जी तो लिसनर्स वेल, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इस म्यूजिकल ट्रैक को एंजॉय किया होगा। वैसे तो ये ट्रैक काफ़ी पुराना है बट स्टिल काफ़ी सूदिंग है, सो मैंने सोचा कि क्यों ना लिसनर्स के लिए इसको शो में शामिल किया जाए। तो जी हम बात कर रही थी कि किस तरह से हम अपने डेली बेसिस के टास्क के साथ कुछ ऐसे लम्हात भी स्पेंड कर सकते हैं जो कि हमें बोर नहीं होने देंगे और हमारी जो ज़िंदगी है वो बैलेंस रहेगी, क्योंकि ऑल द टाइम काम कर करके भी इंसान थक जाता है और ऑल द टाइम एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी नहीं होती। ज़रूरी किस चीज़, ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि दोनों को बैलेंस करके चला जाए। आज मैं अपने तमाम तर लिसनर्स के लिए लाई हूँ एक ऐसी स्पेशल रिकमेंडेशन जो कि आपके फ्री टाइम को काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग बना देगी और आई एम श्योर जब आप इसको देखोगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी आज ही मौका है कि आप आज ही इसे अपने फ्री टाइम में देखें और अपनी लाइफ को थोड़ी सी बोर्डम से हटाएं। बेसिकली आज की जो मेरी मूवी रिकमेंडेशन है वो है डियर सिंध की, जिसकी अगर हम कास्टिंग की बात करें इस मूवी के मेन लीड पर हैं शाहरुख खान एंड ऑफ कोर्स आलिया भट्ट। अगर आपने ये मूवी देखी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा एंड देन बताइएगा कि आपको कैसी लगी और आपको इससे क्या मोटिवेशनल सीखने को मिला। अभी वक्त हुआ है हमारे शो में एक अदद कमर्शियल ब्रेक का, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ,
3: भंगड़े पाओ। आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा माहरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते सुहागा ए क्यों, हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ैनब फातिमा। आप सभी को वेलकम करती हूँ आपके फेवरेट शो द टीवा डायलॉग विद रेडियो फजा 97.1 FM में।

तो लिसनर, जैसा कि आपको और मुझे साथ में तकरीबन हो चुका है एक घंटा, यानी कि अब आपका और मेरा साथ बस कुछ ही लम्हात का बाकी रह गया है। सो मैं चाहती हूँ कि इस साथ को थोड़ा सा खूबसूरत, थोड़ा सा मीनिंगफुल बनाया जाए। जैसा कि हम आ चुके हैं अपने शो के उस सेगमेंट में जिसका आई थिंक सो आपको, मुझे, हम सभी को रहता है बेसब्री से इंतज़ार, क्योंकि इस सेगमेंट में हमारी डिवाइस को मिलती है मोटिवेशन। ना सिर्फ मोटिवेशन बल्कि ज़िंदगी में कुछ नया करने का, आगे बढ़ने का, खुद को प्रूव करने का एक मौका। बाज़ औक़ात ऐसा क्या होता है कि हम अपने आप में, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट चल रहे होते हैं कि हमारे आसपास इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट ऐसा होता है। मैं ब्लेम आपको नहीं कर रही, मैं ब्लेम कर रही हूँ इन्वायरमेंट को, सोसाइटी को। अच्छा, हम इस ऐसे सोसाइटी से बिलोंग कर रहे होते हैं जहाँ पर औरतों को वो बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं दी जाती, जिसके चलते चलते हमारी फीमेल्स को क्या लगता है कि अच्छा वो उन बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए बनी ही नहीं है, या फिर अगर वो अपने बेसिक राइट्स के बारे में बात करेंगी या फिर दूसरों से अपने बेसिक राइट्स मांगेंगी तो उन्हें इस नज़र से देखा जाएगा कि ये तो कुछ ज़्यादा मांग रही है। बट ट्रस्ट मी, इट्स ऑल अबाउट द इन्वायरमेंट, इट्स ऑल अबाउट द सोसाइटी एंड इट्स ऑल अबाउट द कल्चर। हर कल्चर, हर मजहब, हर इंसान को, स्पेशली चाहे वो मेल हो या हो फीमेल, सबको इक्वल राइट्स देता है। ये हमारे कुछ तबकों ने सोसाइटी के अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया है कि जिसमें वो ये कहते हैं कि नहीं, मर्दों के राइट्स ज़्यादा होते हैं, औरतों के राइट्स कम होते हैं। बट ऑनेस्टली, हमारा कल्चर तो हम सबको एक जितने राइट्स देता है, और अगर लड़के आज़ादी से सोसाइटी में मूव ऑन कर सकते हैं, अपने आप को मनवा सकते हैं, हर फील्ड में आगे जा सकते हैं, सो वाई नॉट गर्ल्स, क्यों नहीं लड़कियाँ भी जा सकते हैं, लड़कियाँ भी वो सभी काम कर सकती हैं। सो जी, बात करेंगे, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज जून का है पहला दिन, यानी कि हमारा आधा साल गुजर चुका है। ईद की अफरा तफरी भी अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। मेहमानों का जो आना जाना था और जो एक दावतों का सिलसिला था वो भी ख़त्म हो चुका है। लेकिन आज इस आखिरी सेगमेंट में मैं आपसे कोई भी बड़ी कहानी नहीं शेयर करूँगी, बल्कि आप सभी से डायरेक्ट दिल से दिल की बात कहूँगी। वो कहा जाता है कि योर रिलेशनशिप विद योर सेल्फ सेट्स द टोन फॉर एवरी अदर रिलेशनशिप यू हैव। यानी कि सिंपली अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो सेल्फ वैलिडेशन, सेल्फ वैलिडेशन एक ऐसी चीज है कि जिसकी वजह से, जिसके चलते, जिसके तहत आप अपना रिलेशनशिप हर एक इंसान के साथ अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि जब आपका रिलेशनशिप आपके साथ अच्छा होगा, तभी आपका रिलेशनशिप बाकियों के साथ अच्छा होगा। अच्छा, मैंने ना बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को देखा है सोसाइटी में, वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं वो, लेकिन उनका मेजर फॉल्ट क्या होता है, उनका मेजर फॉल्ट ये होता है कि वो लोग खुद को वैल्यू नहीं करते। अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि इट्स ओके, क्या फ़र्क पड़ता है। समटाइम्स लोग क्या करते हैं कि अपने क्लोज वंस के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए खुद के सेल्फ को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि उस इंसान को सोसाइटी में वो वैलिडेशन नहीं मिलती, वो मकाम नहीं मिलता, वो वैल्यू नहीं मिलती, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो खुद को वैल्यू नहीं करते। तो जब हम खुद को वैल्यू खुद ही नहीं करेंगे तो कोई दूसरा क्यों हमें वैल्यू करेगा। तो लिसनर्स, इस तरह की गपशप तो हमारी चलती रहेगी, क्योंकि हमारा मेन मकसद यही होता है कि आपके लिए कोई ना कोई पॉजिटिव, कोई मोटिवेशनल बात कहें, ताकि आपके अंदर पॉजिटिविटी आए और जो जितनी भी डिवाज इस शो को देख रही हैं उनको एक होप मिले आगे बढ़ने की, कुछ नया करने की। सो जी, एक म्यूजिकल ट्रैक शामिल करती हूँ आप सभी के लिए, सुनते हैं। ये ट्रैक थोड़ा सा पंजाबी है, तो मैंने सोचा कि अब हमने काफ़ी हिंदी गाने तो सुन लिए, कुछ पंजाबी भी होना चाहिए। सो ट्रैक से वापसी पर यहीं से कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को।

सी द लिसनर्स, सो बेसिकली मैं इतना ही कहूँगी आप सभी से कि सेल्फ वैलिडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. खुद को खुद वैल्यू करें और दूसरों से एक्सपेक्ट ना करें कि दूसरे आपको वैल्यू करेंगे. अच्छा, सोसाइटी आपको उसी तरह से देखती है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जज करती है जो साइड, जो पॉइंट ऑफ व्यू आप सोसाइटी को दिखाते हैं. इन केस अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा वैल्यू करेंगे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट होगी, आपका स्टैंडर्ड हाई होगा. सो ट्रस्ट मी डिवास, कोई भी सोसाइटी का मेंबर आपको कभी लेट डाउन नहीं कर सकता, क्योंकि दे आर थिंकिंग कि इसका स्टैंडर्ड तो बहुत हाई है, सो हम इसको डिग्रेड कैसे करें. बट ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर साइड, अगर आप खुद को वैल्यू नहीं करेंगे खुद ही, तो लोग भी आपको उसी नज़र से, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और समझेंगे कि ये इंसान खुद को खुद वैल्यू नहीं करता, तो हम क्यों इसकी रिस्पेक्ट करें. सो आपके तमाम तर रिलेशनशिप्स, तमाम तर ड्रीम्स, तमाम तर टारगेट्स तभी फुलफिल होंगे जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देंगे. सो लिसन टू मी डिवास, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दें और खुद के साथ खुश रहना सीखें, खुद के साथ जीना सीखें. Now let's talk about something we all face right after festive seasons. ईद, जस्ट जैसा कि आपको पता है कि ईद अभी अभी हमारी गुजरी है, और ईद पे क्या होता है कि हम हैवी क्लैम और गॉर्जियस आउटफिट्स तो कैरी करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, बहुत सारा मेकअप अप्लाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से हैवी मेकअप, हैवी बेस और लॉट ऑफ शिमर, जो कि ना सिर्फ वक्ती तौर पर तो हमें खूबसूरत, हमें सुंदर, हमें परफेक्ट दिखाता है, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, आफ्टर अ फ्यू टाइम, आफ्टर फ्यू डेज, स्किन थोड़ी सी डल, थोड़ी सी रफ हो जाती है, क्योंकि हमने बहुत सारे केमिकल्स को अपने फेस पर अप्लाई किया होता है. सो इसे हम कहेंगे पोस्ट मेकअप स्किन हैंगओवर, जिसमें हम क्या करेंगे कि हमारी जो स्किन है ना, आप सभी ने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि अक्सर सडन ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, ब्लॉक पोर्स होते हैं और कम्प्लीटली डल और डिहाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्शन हो जाता है. सो ब्यूटिफुल स्किन रिक्वायर्स कमिटमेंट, नॉट अ मिरेकल. सो टुडे आई हैव ब्रॉट यू 3 पावरफुल ऑर्गेनिक रेमेडीज, जो कि आपके किचन से ही निकलेंगी और किचन के इंग्रेडिएंट से ही बनेंगी, जो कि आपको इंस्टेंटली ग्लो देंगी, रिपेयर करेंगी आपकी स्किन को. सो Grab your pens and diaries and let's revive your skin. So, आज की जो पहली ऑर्गेनिक टिप है आप सभी से शेयर करने जा रही हूँ. इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, बेसिकली जो कि बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप, हैवी शिमर, हैवी टोन्स अप्लाई करने की वजह से स्किन डल और डिहाइड्रेट हो चुकी है, ये उसको रिपेयर करने में हेल्प आउट करेगा. सो फर्स्ट ऑर्गेनिक रेमेडी इज डीप पोर डिटॉक्स हनी एंड क्रोकल क्लिनजर. सो क्या होता है, बाज़ूकात जब हम हैवी ईद पे मेकअप करते हैं, सो स्वेट से क्या होता है, जो डर्ट और पोल्यूशन है वो हमारे पोर्स के अंदर फुलफिल हो जाती है, जिससे क्या होता है, बहुत सारे ब्लैकेट्स हो जाते हैं. सो इसके लिए हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, बेसिक सिंपली हमें चाहिए चारकोल पाउडर 1 टीस्पून और ऑर्गेनिक हनी 1 टेबलस्पून. सिंपली दो ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको, इजीली कहीं से भी मिल जाएंगे और कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. सबसे पहले आपने क्या करना है, सिंपली एक बाउल ले लेना है. बाउल में आपने इस चारकोल पाउडर को विद प्योर हनी, इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके एक स्मूथ सा बैटर कह लो, स्मूथ सा पेस्ट कह लो, इसे बना लेना है. फिर आपने जेंटली इसको अप्लाई करना है ऑल ओवर योर फेस और अवॉइड करना है आईज एरियाज को, ठीक है. अपने पूरे फेस पर आप इसको अच्छी तरह से लगाएं, इसके बाद आपने इसको छोड़ देना है. जब वो नेचुरली ड्राई हो जाए, सो इसे सर्कुलर मोशन में रब करते हुए 2 से 3 मिनट्स में रिमूव कर लें. सो बेसिकली हनी एक्ट्स एज अ नेचुरल एंटीबायोटिक, और जो चारकोल होता है वो हमारी बॉडी से तमाम तर डर्ट को, पोल्यूशन को मैग्नेट की तरह खींच लेता है. सो जब आप इसको वीक में 2 से 3 मरतबा करेंगे, तो आप फील करेंगे कि जो बहुत सा हैवी मेकअप करने की वजह से, बहुत सारी हैवी बेस, हैवी टोन्स यूज करने की वजह से आपकी स्किन में ओपन पोर्स ब्लॉक हो चुके थे और बहुत सारे ब्लैकेट्स हो चुके थे, ये उन चीज़ों को रिमूव कर देगा. सो लास्टली इस ऑर्गेनिक रेमेडी को ट्राई कीजिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनिक रेमेडी की जानिब, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी तमाम तरह डिवास खूबसूरत दिखें, सुंदर दिखें और उनके जितने भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएं, और वो भी ऑर्गेनिकली.
सो जो नेक्स्ट ऑर्गेनिक टिप है जो कि आपकी स्किन को रिपेयर करने में काफ़ी हेल्प आउट करेगी वो ये है हमारे पास। इस पे आपने क्या करना है, सिंपली आपने इसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए, इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं जी राइस फ्लोर 1 टेबलस्पून, फ्रेश योगर्ट 2 टेबलस्पून, लेमन जूस 3 to 4 drops। सो बेसिकली ये स्किन ब्राइटनिंग योगर्ट एंड राइस पैक है जो कि क्या करेगा, इंस्टेंटली आपकी स्किन को ब्राइटन अप करेगा जो कि बहुत ज़्यादा टैन हो चुकी है लॉट ऑफ मेकअप पुट करने की वजह से। सो किस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है, सिंपली आपने राइस फ्लोर को, योगर्ट को, इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके एक थिक क्रीमी पेस्ट बना लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर क्या करना है, इसको अप्लाई कर देना है अपने फेस पर, अपने नेक पर, और लेट इट ड्राई कम्प्लीटली फॉर अबाउट 15 मिनट्स। बिफोर वॉशिंग इट ऑफ स्प्लैश अ लिटिल वाटर एंड जेंटली स्क्रब इट्स अवे। दिस रिमूव्स द बिल्डअप ऑफ योर डेड स्किन एंड रिवील एन इंस्टेंट ब्राइट कॉम्प्लेक्शन। सो बेसिकली कहा जाता है कि जो राइस फ्लोर है इसके अंदर दुनिया टेस्टेड एशियन सीक्रेट्स होते हैं जो कि स्किन को ब्राइट करते हैं, और आप सभी ने ये चीज़ देखी होगी कि जितने भी कोरियंस होते हैं, कोरियंस की स्किन कितनी अच्छी होती है, कितनी क्लास स्किन होती है, कितनी स्मूथ, कितनी शाइनिंग होती है। वो इसीलिए क्योंकि वो लोग अपने रेमेडीज़ में, अपने डेली बेसिस में बहुत ज़्यादा राइस यूज़ करते हैं, राइस वाटर यूज़ करते हैं, चावलों का आटा यूज़ करते हैं। ये वो तमाम तर इन्ग्रीडियंट्स हैं जो कि नेचुरल हैं, टोटली ऑर्गेनिक हैं, एंड देन फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं। सो जब आप इसको अप्लाई करेंगे वीक में 1 से 2 मरतबा, सो यू विल सी द रिजल्ट्स क्लियरली।

जी तो लिसनर, थर्ड जो ऑर्गेनिक रेमेडी है जो कि आपकी स्किन को हील करने में हेल्प आउट करेगी, वो है जी सूदिंग हाइड्रेशन एलोवेरा क्यूकम्बर आइस मेल्ट। सो बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि ईद फेस्टिव सीजन्स होते हैं, दावतों का सिलसिला होता है, तो हम ढेरों खाना बनाते हैं और किचन में हमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। सो किचन में हीट की वजह से, गर्मी की वजह से हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाती है, रेड हो जाती है, डिहाइड्रेटेड हो जाती है। सो इसके लिए ये बेसिक से इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको आपने इस्तेमाल करना है, और ये इंग्रेडिएंट्स सुनने में आपको बेसिक से लगते हैं, आपको फील होता है कि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, बट ट्रस्ट मी इट्स वर्क लाइक अ मैजिक ऑन योर स्किन ऑन योर बॉडी। सो आपने इस बेसिक से इन इंग्रेडिएंट्स को ले लेना है। अब इनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, फ्रेश क्यूकम्बर जूस 1 से 2 कप, प्योर एलोवेरा जेल 1 टेबल स्पून, रोज वाटर 1 to 2 टेबल स्पून। सिंपल से 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। सो फर्स्ट आपने क्या करना है, ब्लेंड करना है क्यूकम्बर जूस को एलोवेरा जेल एंड रोज वाटर के साथ। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। फिर आपने इस लिक्विड को अच्छी तरह से आइस ट्रे में डालकर फ्रीजर में फ्रीज कर देना है, ठीक है। एवरी नाइट जब आप सोने लगें तो आफ्टर यानी कि बिफोर बेड, सोने से पहले रैप 1 क्यूब इन अ थिन क्लीन कॉटन क्लॉथ एंड जेंटली ग्लाइड इट अक्रॉस योर फेस अनटिल इट मेल्ट्स। सो बेसिकली जब आप इसको अप्लाई करेंगे, यू विल सी दिस एक्ट्स एज अ सूदिंग स्किन शील्ड, रिड्यूसिंग एनी रेडनेस एंड लॉकिंग इन डीप हाइड्रेशन। सो मेरे प्यारे डीवास, ये थी हमारी आज की 3 ऑर्गेनिक रेमेडीज जो कि आपकी स्किन को डिहाइड्रेशन से बचाएंगी, रिफ्रेशिंग की तरफ लाएंगी और आपको देंगी एक इंस्टेंटली फ्रेश ग्लो। सो लास्ट में ट्राई करिएगा इन ऑर्गेनिक टिप्स को, ताकि जो ईद पर आपने दावतें वगैरह और इन सब की चीज़ों के बीच में जो आप अपनी स्किन को भूल चुकी थी, आपकी स्किन डल हो चुकी थी, उसको भी मौका मिले हील होने का। क्योंकि एक असली डीवा हमेशा वही होती है जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा इनहेंस हो, और उसकी नॉलेज के साथ साथ उसकी स्किन भी ग्लो करे। सो लाजमी ट्राई करिएगा इन रेमेडीज़ को और मुझे बताइएगा आपको ये रेमेडीज़ कैसे लगी। सो एक बार फिर से बताती चलती हूँ, 01157100971 है आपका और मेरा राब्ते का नंबर, यानी इस नंबर के ज़रिए से आप मुझसे शेयर कर सकते हैं अपने ख्यालात, क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। एंड देन एक बार फिर से बता देती हूँ कि radiofaza.com.uk है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। सो इस वेबसाइट के थ्रू आप हमें ट्यून कर सकते हैं, और हमारी एप्लीकेशन है रेडियो फजा 97.1 FM, जिसे आप इजीली अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, और आप हमारे साथ इसी तरह से कनेक्टेड रह सकते हैं, आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी। और वो तमाम तर लोग, वो तमाम तर हमारी बिजनेस आइकन, हमारी बिजनेस वूमेंस, या फिर हमारे वो तमाम तर लिसनर्स जो ड्राइव कर रही हैं, या फिर सफ़र में हैं, अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रही हैं, या फिर अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन भी हो जाए खूबसूरत, हो जाए रिफ्रेशिंग, सो फजा डैप के थ्रू आप हमें ट्यून कर सकते हैं। जी तो लिसनर्स, इसी के साथ साथ हमारे शो का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करती हूं कि आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। शो के इख्तिताम पर एक बार फिर से हम अपने आज का जो हमारी एक परंपरा है कि अपने आज के कोट ऑफ द डे को रिपीट कर देती हूं, यानी कि हमारा आज का कोट ऑफ द डे मंडे की चल सो चल, मंडे की एंजाइटी, मंडे की टेंशनों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हमारी सिचुएशन से रिलेट कर रहा है। क्योंकि अक्सर होता है ना कि मंडे को लोगों के माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, क्योंकि एक नया वीक स्टार्ट होता है, स्पेशली आज तो 1 जून 2026 है, यानी कि एक न्यू मंथ का भी स्टार्टअप है। सो लोगों के माइंड में बहुत सी चीज़ें होती हैं कि हमने इस वीक में ये तमाम तर टास्क कंप्लीट करने हैं, ये बहुत से गोल्स करने हैं, और इन तमाम तर कामों को हम किस तरह से बाय द टाइम फुलफिल कर लेंगे। सो उन तमाम तर टेंशंस को, ओवर थिंकिंग को, एंजाइटी को कीप इन माइंड रखते हुए आप आज के इस कोट से रिलेट कर सकते हैं। सो हमारा आज का कोट ये कहता है कि अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ नया हासिल करना चाहते हैं, या फिर आपके कुछ गोल्स हैं, कुछ टारगेट्स हैं,
سو آپ نے فوراً سے پینک نہیں کرنا, آپ نے فوراً سے اسٹریس آؤٹ نہیں ہونا. آپ نے کیا کرنا ہے, فرسٹ آف آل آپ نے اپنے فرسٹ اسٹیپ کے بارے میں سوچنا ہے. آئی نو اٹس ڈیفیکلٹ, اٹس ریئلی ہارڈ, کیونکہ مائنڈ میں وہ سب چیزیں چل رہی ہیں, بٹ ٹرسٹ می, وین یو اسٹارٹ اے فرسٹ اسٹیپ تو آہستہ آہستہ آپ کی جو رستہ ہے وہ خود بہت بن جاتا ہے, چیزیں خود بہت سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں. سو اگر آپ آج کے بارے میں سوچیں گے, اپنے آج کو بہتر بنائیں گے, اپنے آج کو اچھا بنائیں گے, تو کل آٹومیٹیکلی اچھا ہو جائے گا. اب میں آپ کو سمپلی اس کی ایگزامپل دیتی ہوں اپنے ایک ٹاسک سے. اچھا, فیو ڈیز اگو میں ایک کام کر رہی تھی, اٹس اے اسائنمنٹ فار مائی یونیورسٹی ورک. سو کیا ہوا کہ میں نا پہلے تو کافی ٹائم بیٹھ کے سوچتی رہی کہ اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ, اٹس ریئلی ہارڈ, تو میں اس کو کس طرح سے کمپلیٹ کروں بائی دا ٹائم. اور یہ جو چیز تھی نا, یہ سوچتے سوچتے بہت سا ٹائم میرا گزر گیا. بٹ دین آئی ریئلائز کہ اگر میں اسٹارٹ نہیں کروں گی تو اینڈنگ تک کس طرح سے پہنچوں گی. سو میں نے اس کو اسٹارٹ کیا, اینڈ اسٹارٹنگ میں مجھے لگا کہ یہ بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے, بہت بڑا ٹاسک ہے, پتہ نہیں کمپلیٹ ہوگا یا نہیں. بٹ میں نے کہا کوئی بات نہیں, اٹس اوکے, فرسٹ اسٹیپ سے اسٹارٹ کرنی ہے. سو میں نے جسٹ اپنے فرسٹ اسٹیپ پر دھیان دیا, اس پر فوکس کیا, میں نے اسٹارٹ کیا. اسٹارٹ کرتے ہی تھوڑا ٹائم لگا. شروع میں تو ظاہر سی بات ہے آپ کو کافی چیزیں مشکل لگ رہی تھیں, بٹ ایک گھنٹہ لگا, اینڈ دین سیکنڈ گھنٹے میں مجھے آہستہ آہستہ چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو گیا, اور مجھے پتہ چل گیا کہ اچھا کیسے کرنا ہے. اینڈ دین ٹرسٹ می, جسٹ 2 hours میں میں نے اپنا اتنا بڑا پروجیکٹ کمپلیٹ کر لیا, جسٹ کیونکہ میں نے اپنے فرسٹ اسٹیپ پہ فوکس کیا تھا. تو آپ سبھی لسنرز کو, آپ سبھی ڈیواز کو میں یہی کہوں گی کہ آپ بھی اس اسٹریٹجی کو اپلائی کریں اور اپنے آج کو اچھا بنائیں, کیونکہ آج اچھا تو کل آٹومیٹکلی اچھا ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی ہوسٹ زینب فاطمہ کو دے اجازت. آئی نو شو ابھی ختم ہو چکا ہے, لیکن آپ کا دن ابھی باقی ہے. سو کوشش کریے کہ آج کے دن کو اچھا بنائیں, پازیٹیو رہیں, اور اپنے آس پاس ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. اور مجھے اپنی ہوسٹ زینب فاطمہ کو دے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انٹل نیکسٹ شو میں. تب تک کے لیے اس خوبصورت سے ٹریک کو انجوائے کریں, اور انجوائے کرتے کرتے مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ کو آج کا شو کیسا لگا.

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

और उसी के साथ साथ प्रोग्राम आप सुने लंच बॉक्स लंच मिल्क ओपन करते हैं इस खूबसूरत लंच बॉक्स को जिसमें ना सिर्फ खाना होता है बल्कि बहुत सी बातें छुपी होती हैं क्योंकि कुछ बातें जो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ कुछ ऐसी बातें जो आप मुझ तक पहुँचाते हैं इट्स मीन के प्रोग्राम में आपको प्रोवाइड करते हैं इन्फॉर्मेशन मीडिया आपकी होती है कम्युनिकेशन और होती है मिल्क एंटरटेनमेंट। प्रोग्राम में आप हमारा साथ दे सकते हैं अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिला सकते हैं आज के दिन के हवाले से कोई ट्रैक प्ले करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं किसी प्यारे को कोई ट्रैक डेडिकेट करना चाहें वो भी कर सकते हैं या फिर कोई खूबसूरत सा मैसेज हम तक पहुंचाना चाहें तो आप पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचाना है नंबर जल्दी से नोट कीजिएगा 0115710971। इस खूबसूरत से नंबर को कीजिएगा सेव और सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। इसके अलावा मुझे गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं radiofiza.co.uk आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा वहाँ पर आपको हमारा या किसी भी प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन लेनी हो कि कौन सा प्रोग्राम कौन सा आरजे किस टाइम पे करता है किस तरह का करता है सो वो आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से radiofiza 97.1 FM के नाम से। हम आपके साथ साथ रेडियो फिज़ा है आपके साथ साथ आपकी तन्हाई का साथी। वो कहते हैं ना तन्हाई का साथी जो है वो या तो एक बहुत ही ख़ास बंदा होता है या फिर ट्रैक होते हैं या फिर रेडियो ही होगा या जाहिर सी बात है रेडियो फिज़ा होगा भाई आपकी तन्हाई का साथी क्योंकि रेडियो फिज़ा सिर्फ आपकी तन्हाई का साथी नहीं बल्कि हमारी तन्हाई का साथी भी है बशर्ते कि इंटरनेट आपके पास अपना होना चाहिए। इंटरनेट अपना होगा तभी कुछ है काम बनेगा और मज़ा भी आएगा। है सवाल प्रोग्राम का आगाज करेंगे हमेशा तरह प्रोग्राम में एक छोटा सा टॉपिक रखा जाता है उस टॉपिक के बारे में डिस्कस जो है स्टार्ट की जाती है इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है बल्कि मुझे म्यूजिक ट्रैक भी आप तक पहुंचाए जाते हैं लेकिन अभी के लिए प्रोग्राम में प्रोग्राम का आगाज करेंगे खूबसूरत से ट्रैक के साथ। शाम कर चुके हैं इस खूबसूरत से ट्रैक को इस छोटे से ट्रैक को मिलते हैं इसके उस पार रहेगी आपसे मुलाकात सो डोंट गो एनीवेयर रहिएगा मेरे साथ साथ।

0: आगे चल सकता है। सो जज्बाती कैफियत की बात की जाए तो खुशी, हैरत ज़दा हो जाना, एकदम से खौफ आ जाना या उदासी जैसा, ऐसे जज्बात जो हैं वो शिद्दत से जो है महसूस किए जा सकते हैं और हो भी सकते हैं अगर ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में अचानक हो जाती है, अनएक्सपेक्टेड होती है। और इसको आपने कैसे लेकर चलना है ये आप बता सकते हैं। मतलब अब मैं जब इस जॉब पर आई तो मैं जॉब, मुझे यही था कि मतलब होगा या नहीं होगा, मतलब ऊपर नीचे था, प्लस माइनस ही था। लेकिन जब वो चीज़ हो गई और मुझे पता चला कि यार अब ये मुझे चीज़ करनी है, तो फिर मैं जब मैंने उस चीज़ में हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, फिर मुझे पता चला कि उसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे, जिसके ऊपर मुझे काम करना है, जिसको लेकर मुझे चलना है, जिसको मैंने कैरी करना है सही से। सो वो चीज़ें मेरे साथ अनएक्सपेक्टेड हुई थी और मैं उनको काफ़ी अच्छे से लेकर चल पड़ी। किस वजह से लेकर चल पड़ी? क्योंकि मैंने एहतियात से फ़ैसला किया, सोच समझ के फ़ैसला किया, ना कि जल्दबाजी की। ज़िंदगी में ऐसा टाइम आता रहता है कि आपको खुद समझ नहीं आती कि आपको करना क्या चाहिए। सो अब वो अब इसी रिलेटेड नहीं है कि बंदा जॉब के लिए निकलता है या कोई और मसला या ऐसा कोई सीन है। इंसान की पर्सनल ज़िंदगी में बहुत से ऐसे जो है वो सिचुएशंस आ जाती है कि जिसको वो कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो है वो आ जाती हैं। और मेरे ख्याल में वो चीज़ आपको डिस्टर्ब भी कर देती है, इस डिस्टर्ब आपको इस तरह से कर देगी कि आप उसको बहुत ज़्यादा सोचने लग जाएंगे। और मेरे ख्याल में ज़्यादा सोचने वाली चीज़ जो है वो आपको डिस्टर्ब ही करेगी, आप उसको जो है वो वक्त पे छोड़ दें। कहते हैं कि वक्त बहुत जालिम होता है, लेकिन वक्त पर छोड़ेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ भी आने लग जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि मैंने इसको कैसे लेकर चलना है, इस चीज़ को कैसे कैरी करना है। सो ये चीज़ इंसान पे डिपेंड करती है कि वो हर चीज़ को कैसे कैरी कर सकता है, वो हर चीज़ को कैसे लेकर चल सकता है। ये आने वाले जो हालात होते हैं, जो आने वाली सिचुएशंस होती हैं, इंसान को खुद ही तैयार करवा देती हैं और इंसान तैयार हो भी जाता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आके ये चीज़ आ जाती है कि मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं हो पाएगा। इंसान मतलब सोच सोच में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लेकर चल पड़ता है। मेरे ख्याल में जब आप अपने दिमाग में किसी भी चीज़ को बिठा लेंगे तो वो चीज़ वाकई नहीं हो पाएगी। अगर आप उसको इस चीज़ मतलब ये बोलेंगे कि ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, तो वो नहीं हो पाएगी। आप अपने दिमाग में इस चीज़ को बिठाएं कि आप हर चीज़ को कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को भी आप कर सकते हैं। किसी का अचानक से किसी की ज़िंदगी में आ जाना और पता भी नहीं होना कि इंसान मतलब उसको उस नज़र से देखता भी है या नहीं देखता, किसी भी तरह का काम हो जाना, मतलब आगे हम जॉब्स की बात कर रहे थे और बहुत सी चीज़ों की बात करते, लेकिन अब एक दो पर्संस की बात की जाए तो अचानक से किसी की लाइफ में आ जाना, किसी की ज़िंदगी में आ जाना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है और इंसान को खुद ही समझ जाती है कि उसको आगे को जवाब, अगले को जवाब क्या देना चाहिए। सो बात को कंटिन्यू करेंगे यहीं से आकर बड़ा बिक्री प्रोग्राम में। एक छोटी कमर्शियल ब्रेक ख्याल होने लगी, इस कमर्शियल ब्रेक के बाद रहेगी आपसे मुलाकात। सो डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ, मिलते हैं इस ब्रेक के उस पार।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07595150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है?
4: यार घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
5: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
5: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
6: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
5: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
7: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2

जी हाँ, तो वन सेकेंड वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुने हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज आप सुने हैं सलूराज की। सो उसी के साथ साथ प्रोग्राम में एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक हो चुकी है, कमर्शियल ब्रेक उस पर रही आपसे मुलाकात फिर से। सो गपशप हमारी स्टार्ट थी और आई डोंट नो कि मैं बात को कहाँ छोड़ के गई थी, कहाँ मतलब मैं भूल जाती हूँ, भुलक्कड़ होती जा रही हूँ ना, बातें भूलने लग जाती हूँ। सो बस बात को कंटिन्यू करेंगे एक नए सिरे से। अब अभी के लिए प्रोग्राम में थोड़ा सा ट्रैक को शामिल करेंगे। ट्रैक की फरमाइश आई थी तो मैंने सोचा कि उसको भी पूरा कर दीजिए, पूरा करने के साथ साथ आपके साथ गपशप भी लगेगी। बट अभी तक के लिए इस छोटे से ट्रैक को इन्जॉय कीजिएगा।

जी हाँ, तो वन सेकेंड वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनती हुई समातों को रेडियो 97.1 FM के लाइव स्टूडियो से। आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज़ आप सुन रहे हैं सलूराज की। सुबह मेरा आपका साथ रहेगा ठीक और ठीक दो घंटे का, यानी कि 2 बजे तक। और प्रोग्राम में छोटा सा ट्रैक शामिल किया था, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। एक छोटी सी फरमाइश में बस मौजूद थी अरिजीत सिंह की आवाज़ में। ऐसे कहते हैं कि अरिजीत सिंह जो हैं वो मतलब अरिजीत सिंह के गाने सुनने के बाद वो इंसान भी याद आ जाता है जिससे आप कभी मिले ही ना हो, पता नहीं। पर मेरे साथ ऐसा फील हुआ, मतलब ये ट्रैक उस तरह का नहीं था, लेकिन कुछ ट्रैक उनके ऐसे होंगे जिनको सुनने के बाद शायद ऐसा फील होता हो। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि घर के ताने और अरिजीत सिंह के गाने दिल पे लगते हैं। मतलब पता नहीं लोग कैसे ऐसे फनी कमेंट्स कर देते हैं, फनी बातें लिख देते हैं। मुझसे तो मतलब बनती ही नहीं है, अब तो दिमाग इतना तेज है ही नहीं कि जितना आपका तेज है उतना वैसे मेरा दिमाग तेज नहीं है। बट आपको पता है बातें भूलना शुरू हो जाती हूँ, भुलक्कड़ सी हूँ। सो वेल, प्रोग्राम में गपशप को स्टार्ट करेंगे। बात हम कर रहे थे अनएक्सपेक्टेड चीज़ों की, ज़हनी दबाव की, कि अगर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाएँ तो उसकी वजह से ज़हनी दबाव पर असर पड़ता है। ज़हन पर क्या असर पड़ता है, इंसान उस चीज़ को कैसे लेके चलता है, ये जो है आपसे डिस्कस की जा रही थी।

खैर और इसी के साथ साथ बातों का सिलसिला जारी करेंगे, साथ ही में एक और छोटे से ट्रैक को शामिल करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आपको बोर ना करूँ, क्योंकि पता है आपको कि वीकेंड के बाद थोड़ा सा रूटीन पे आना मुश्किल हो जाता है, बट आपके मूड को अच्छे से अच्छा बनाएंगे ताकि आपका पूरा वीक जो है वो अच्छा गुजरे। प्रोग्राम में शामिल होकर कोई ट्रैक शामिल करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं, या फिर कोई खूबसूरत सा पैगाम हमारे नाम या फिर किसी प्यारे के नाम तो वो आप करवा सकते हैं। हमेशा एक बात बोल दूँगी कि अगर ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन में आपके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ, लेकिन वो इंसान जो आपका बहुत ख्याल करता है, आपको समझाता है, हर बुरी बात समझाता है, हर अच्छी बात का बताता है, सो उस इंसान को कभी भी अपनी ज़िंदगी में मत खोएं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। अक्सर हालात ऐसे हो जाते हैं, वक्त ऐसा हो जाता है कि ख़ुद समझ नहीं आती। मैं हमेशा कहती हूँ कि किसी के कहने पे किसी दूसरे से अपना रिश्ता ख़राब ना करें। हो सकता है कल को वो इंसान अपने साथ रिश्ता ठीक कर ले, लेकिन आप जो हैं उसके साथ उस तरह का रिश्ता अपना ना दोबारा कर पाएं। मैंने बहुत से ऐसे चीज़ें देखी हैं, बहुत से ऐसे रिश्ते देखे हैं जो दूसरों की वजह से ख़राब होते हैं, दूसरों की बातों में आके ख़राब होते हैं। और मैंने अगले ही दिन जो है ना उन दोनों को जो है इकट्ठे बैठा देखा कि यार मतलब समझ नहीं आती कि इंसान दूसरे का बुरा चाहकर अपना अच्छा कैसे कर सकता है। मेरी बड़ी कोशिश रहती है कि मेरा किसी की वजह से मतलब मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, किसी की आंखों में मेरी वजह से आंसू ना आए। सो आप भी इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में रखें, आप बहुत कामयाब होंगे। अगर आप किसी का ख्याल करेंगे, किसी की केयर करेंगे अपनी हर उस कामयाबी में, अगले को जो है वो फर्स्ट पे रखेंगे, जिसको आपको लगता है कि उसकी इस दुनिया में मतलब लोगों को लगता है कि उसकी यहाँ पे कोई अहमियत नहीं है, कोई उसकी इज्जत नहीं है। हमारे माशरे में जो है पैसे वाले को ज़्यादा इज्जत दी जाती है, सो इस चीज़ को जो है ना वो थोड़ा कम कर दें। सबका ख्याल करें, इस चीज़ का कम से कम ख्याल कर लें कि अगर आप अब जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं, कल को मतलब कल एक टाइम था आप भी उसी जगह पे खड़े थे जिस पे आप दूसरा इंसान खड़ा, सो उस चीज़ का ख्याल रखें। उस इंसान को इग्नोर मत करें, उसके जज्बात को इग्नोर मत करें। सबका ख्याल रखें ताकि सब आपका ख्याल रखें। अगर आप दूसरों का ख्याल रखेंगे तो बाकी भी लोग आपका ख्याल रखेंगे। सोवल आप बात को जारी करेंगे, आकर कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में मेरा आपका साथ 2 बजे तक होता है, सो अभी तक प्रोग्राम में एक छोटी सी फरमाइश को शामिल कर चुके हैं कोक स्टूडियो भारत। ये सुनते हैं इस खूबसूरत सी आवाज़ को, इस खूबसूरत से ट्रैक को, मिलते हैं इसके उस पार। सो डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो 97.1 एफएम के लास्ट स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुने हैं लंच बॉक्स लाउंज, आवाज आप सुने हैं सुरराज के साथ। प्रोग्राम में ट्रैक शामिल किए जा रहे हैं, उम्मीद करते हैं आपको पसंद भी आ रही होगी। एक छोटी सी फरमाइश आई है और मैं उसको पूरा करे जाती हूँ।

ट्रैक जो है ना, मतलब ये एक ड्रामे का ओएसटी है और इसको मैंने बहुत ज़्यादा मतलब सुना है, और इसका जो मतलब ड्रामा था वो भी बड़े मज़े का था इस ट्रैक का। सो बस आइए सुनते हैं इस खूबसूरत से ट्रैक को। इस ट्रैक के उस पर रहेगी आपसे मुलाकात। सो डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो वजन 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, साथ हमारे रहेगा ठीक ठीक 2 बजे तक। सुन प्रोग्राम में थोड़ा सा ट्रैक शामिल किया था, उसके बाद रहेगी आपसे मुलाकात। प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे हम टॉपिक को अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के हवाले से, कि क्या चीज़ अचानक ज़िंदगी में हो जाए तो उसको कैरी करना थोड़ा सा कितना मुश्किल हो जाता है, कौन कैरी कर लेता है, या कैरी करने के तरीके जो हैं वो बताए जा रहे हैं। सो वह इन्फॉर्मेशन इसी के रिलेटेड आपके पास है, सो आप मुझे बता सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल होने का बड़ा ही आसान सा तरीका है। जिन नए लोगों ने आज रवि फजल 97.1 एफएम को ट्यून किया है, बेहद शुक्रिया आप तमाम समातों का।

प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, आप मौजूदगी का एहसास भी दिला सकते हैं। नंबर बड़ा ही प्यारा है 01157100971। इस खूबसूरत से नंबर कीजिएगा सेफ, और सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। सो इसी के साथ साथ मैंने सोचा कि क्यों ना प्रोग्राम में जो है वो अपनी आवाज़ भी सुना दीजिए और साथ में जो है ट्रैक भी आपके साथ प्ले कर दीजिए, ताकि आप ट्रैक को भी सुनते रहें और आप हमें भी सुनते रहें। सो बात कर रहे थे कि ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं, सो उनको लेके आगे चलना बहुत मुश्किल होता है। समझदार इंसान जो है वो एहतियात से फैसले करता है, सोच समझ के बात को आगे ले करता है, लेकिन जिस इंसान को जल्दी होती है, जिसको मामलात ख़राब करने होते हैं, वो फ़ौरन से फैसलों को जो है वो ले लेता है। वो कहते हैं ना, जब ज़ुबान अकल छोटी हो जाए तो ज़ुबान जो है वो लंबी हो जाती है। सो कुछ इसी तरह की सिचुएशन आ जाती है ऐसे हालात में, जब आपके पास आपके साथ कोई अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ हो जाती है और आप उसका फैसला फ़ौरन से ले लेते हैं। सो उनके लिए जो है ये बात वाकई में मेरे ख्याल से बेस्ट है कि अकल छोटी हो जाए तो ज़ुबान लंबी हो जाती है। ऐसे तो हर कोई फ़लसफे मार लेता है। सो इंसान के पास अकल बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, और हर इंसान अपने आप को अक्लमंद ही समझता है, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन किसी न किसी जगह पर आकर वो ऐसी गलती कर जाता है जहाँ पर फिर बाद में उसको एहसास होता है कि नहीं, इधर मुझे ऐसे नहीं जो है वो रिएक्ट करना चाहिए था।

सवाल इसी के साथ साथ बात कंटिन्यू करते रहेंगे क्योंकि प्रोग्राम में जो है वक्त बहुत जल्दी गुजर जाता है, स्टूडियो के डायल मशीन पे वक्त हुआ जाता है 1:14 अभी हो चले 15 मिनट। सो अभी के लिए प्रोग्राम में खूबसूरत से ट्रैक को शामिल किया, इसके जो है वो साथ ही आपके दरमियान एक खूबसूरत ट्रैक शामिल करेंगे। एक फरमाइश हमारे पास मौजूद है, किसी प्यारे को कोई ट्रैक डेडिकेट करना चाहे या फिर कोई ट्रैक आप सलूराज को डेडिकेट करना चाहे सो वो भी कर सकते हैं। फिर से कहूंगी कि अगर जिंदगी में कोई चाहने वाला इंसान है जो आपको बहुत अजीज है, आप उसको बहुत अजीज है, वो कहते हैं ना कि जब जिंदगी में ऐसे ऐसे मसले आ जाए उस इंसान के साथ जो आपको बहुत ज्यादा अजीज हो, जिसके बाद आपको कोई भी ना हो, सो अगर उसके साथ कोई अनबन हो जाती है तो खामोश हो जाना चाहिए। अगर वो कहते हैं ना कि अगर आपने अगर बात जरूरी है तो आप इंसान को भूल जाएं, अगर इंसान जरूरी है तो बात को भूल जाएं।

सवाल इसी के साथ साथ प्रोग्राम में एक छोटे से ट्रैक को शामिल कर देते हैं। अगर सबको आगे कंटिन्यू करेंगे, आवाज़ आपको अपनी सुनाते रहेंगे, बट अभी के लिए आपने कहीं नहीं जाना, जुड़े रहना है फजा के साथ विद सलूराज। प्रोग्राम में शामिल करेंगे जो ट्रैक वो मुझे मिल नहीं रहा, सो अभी हम कोशिश करेंगे कि ट्रैक को ढूंढ लेते हैं और ढूंढ कर फिर उसको जो है वो प्ले कर देते हैं।

सुबह उसी के साथ साथ ट्रैक हमें मिल चुका है, इस ट्रैक को शामिल कर देते हैं आपके अपने दरमियान। उम्मीद करती हूँ कि आपको ट्रैक पसंद आएगा। बस इसके बाद मेरी तरफ से ट्रैक प्ले हुआ जाएगा आप सबके लिए। वो अजीज लोग जो इस टाइम मुझे सुन रहे हैं, अपने कीमती टाइम में से मेरे लिए टाइम निकाल रहे हैं। सो बताइएगा घर बैठे वो तीन

0: जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक छोटा सा ट्रैक शामिल कर जाते हैं, एक और आपके साथ। ट्रैक का नाम है हत, बट इस ट्रैक को सुनने के बाद एक अलग सी फीलिंग आती है, ना जाने क्यों, बट सॉफ्ट भी है और दूसरा ये कि इसको सुनने के बाद एक अलग सा सुकून आने लग जाता है।
1: दीवार नीले रंग से सजाऊं, पसंद है।
0: बाय द वे, जो लिरिक्स इस ट्रैक में है, अमूमन जो है वो ख्वातीन वुमेन जो है ऐसे ख्वाब लेकर चलती हैं। सो बस जिंदगी में शहजादे नहीं आते, सिर्फ ट्रैक ही बने जाते हैं, लेकिन अगर आने हों तो आप भी जाते हैं, नसीब नसीब की बात होती है। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि ये शहजादे जो है ना, ये नहीं आते। आपको अपनी ज़िंदगी में हर लड़ाई हर जंग खुद लड़नी पड़ती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे जो हैं वो ट्रैक और मूवीज़ जो हैं, ये कोरियन के ड्रामे हो गए, ये जब ज़्यादातर खवातीन ही देखती हैं, लड़कियाँ ही देखती हैं, सो वो इस चीज़ को जब देखती हैं तो इस चीज़ को लेकर आगे चलती हैं, वो इस चीज़ को ही दिमाग में रख लेती हैं कि यार जैसा इसमें दिखाया गया है वैसा ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो अपनी ज़िंदगी की जंग आपने खुद ही लड़नी, ना कि किसी दूसरे ने। सो आइए सुनते हैं इस ट्रैक को, मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार।

0: जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो वजन 97.1 एफएम के लास्ट स्टूडियो से। सवाल बात को कंटिन्यू करें, इससे पहले आपको बता देते हैं कि प्रोग्राम में जो वक्त हो जाता है मेरा दरमियान एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। एक तो जब गपशप स्टार्ट हो जाती है ना सही वाली, और बीच में जो कमर्शियल ब्रेक आ जाती है, नहीं आके डिस्टर्ब कर जाती है।
1: सब सज नजर आखा
0: लेकिन हर कोई बात नहीं, प्रोग्राम में मेरा आपका साथ रहेगा। ठीक है, ठीक 2 बजे तक अभी हमारे दरमियान काफी ज्यादा टाइम है। अगला सेगमेंट हमारा होता है ट्रैक का। ट्रैक के साथ साथ आपके साथ गपशप भी रहेगी। अभी तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर 97.1 एफएम एंड डैप।
1: मेरे अपने नु गैर बन ऐ ता जरूर दिल।
0: मिलते हैं इस छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के उस पार, सो डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है। और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG7 6LW।
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG3 5QS।
10: हर दिन को बनाएं स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी, वाइब भी।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनती हुई समातों को रेडियो फजा 97.1 एफएम के लास्ट स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, मेरा आपका साथ रहेगा ठीक है ठीक 2 बजे तक। सो प्रोग्राम में एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक हो चुकी थी, कमर्शियल ब्रेक के बाद रही आपसे मुलाकात। सो इसी के साथ साथ बात हम कर रहे थे ट्रैक्स के हवाले से। अभी जैसे एक ट्रैक शामिल किया था ब्रेक से पहले, ब्रेक से पहले उस ट्रैक को सुना, और मेरे ख्याल में कि हर ट्रैक के पीछे जो है ना कोई ना कोई सिचुएशन होती है, कोई ना कोई स्टोरी होती है, तभी उस ट्रैक को जारी कहा जाता है, उसको गाया जाता है। और बहुत से ऐसे ट्रैक्स होते हैं जिनको सुनने के बाद हम जिंदगी में बहुत कुछ सीख जाते हैं, और बहुत से ट्रैक ऐसे होते हैं जिनको सुनने के बाद हम अपना आप जो है ना वो उन पे ही छोड़ देते हैं कि यार उसमें ऐसी बात ही तो अब ऐसा ही होकर रहेगा। सो ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ट्रैक्स को इंजॉय की हद तक रखें, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हाँ, गाने वाली की सिचुएशन हो सकती है उसमें, लेकिन आपका इसमें कोई किरदार अदा नहीं है। सो इस चीज़ का ख्याल रखें। वेल, प्रोग्राम में हमारा लास्ट सेगमेंट हम रखते हैं म्यूज़िक का। सो म्यूज़िक आपके साथ शामिल करेंगे। मैंने सुना है कि तलहा अंजुम की आवाज़ बहुत प्यारी है, और तलहा अंजुम को आप देखें तो वो जो है एक शो में आया, लाइव शो में, और वहाँ पर आकर उन्होंने बोला कि मुझे जब फर्स्ट साइडेड लव होता है, एक तरफा मोहब्बत होती है, तो मैं ट्रैक जो है वो लिख देता हूँ। मतलब बड़ी मज़े की बात है कि जब इंसान को एक तरफा मोहब्बत होती है वो गाने लिखने शुरू कर देता है, और वो भी एकदम परफेक्ट और फेमस भी हो जाते हैं। सो वेल, उस ट्रैक के पीछे उनकी स्टोरी छुपी हुई है, ना कि आपकी। इस चीज़ का ख्याल रखें, अपनी ज़िंदगी इनके पीछे भी आके भी ख़राब ना करें, इनके मुताबिक लेकर खुद को ना चलें। वेल, अभी के लिए प्रोग्राम एक छोटा सा मैशअप शामिल कर दिया है, बीच में आपको तलहा अंजुम की आवाज़ भी सुनाई देगी। सो अभी तक के लिए कहीं नहीं जाना, जुड़ा रहना है फजा के साथ विद सलूराज। मिलते हैं इस खूबसूरत से मैशअप के उस पार।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो वजन 97.1 एफएम के लास्ट स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुने लंच बॉक्स लाउंज, आवाज़ आप सुन रहे हैं सरराज के सुरुसी के साथ साथ। प्रोग्राम में वक्त काफ़ी ज़्यादा कम रह चुका है, सो एक छोटे से ट्रैक की फरमाइश मौजूद है, उसको शामिल करते हैं। मेरे ख्याल में उसको सुनने के बाद मुझे आपसे इजाज़त चाहिए होगी। सो आइए सुनते हैं सरताज की आवाज़ को। सरताज की आवाज़ सुनने के बाद एक अलग सही जुनून जो है ना वो आ जाता है, ना जाने क्यों। सो आइए सुनते हैं इस ट्रैक को, मिलते हैं इस ट्रैक को। सो डोंट गो एनीवेयर, रहिएगा मेरे साथ साथ।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो वजन 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। सवाल अब उसी के साथ साथ प्रोग्राम में वक्त हो जाता है खत्म। अब आपको मुझे देनी होगी इजाजत, कल मिलेंगे सेम टाइम पे सेम प्लेटफॉर्म पे। कल तक के लिए अपना, अपने प्यारों का और अपने लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG77FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG24LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
6: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं, चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are playing
12: Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM।
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि वो हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

जाते जाते हम आपको एक सॉन्ग सुनाना चाहते हैं कि कदी ते हस बोल वे नजिंद साड़ी रोल वे। सुनिएगा और सुर धुनिएगा।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.

0: عبيدتنا حب.
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
2: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें. सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए. गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर. और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी. स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर. चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ. रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक. विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669. मराया रेस्टोरेंट, जहाँ हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा.
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ.
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले.
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं. और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं.
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्रे पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ. ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं. चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा.
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे.
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है. होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793.
6: Ariana Supermarket, 126-132 Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
8: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है. आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है. जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में. तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद. मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2.
9: You are listening 97.1 FM.

0: You are listening 97.1 FM.
1: Are you ready?

अगर कोई ये तय कर रहा है कि आप क्या पहने, किससे बात करें या आप पर शादी के लिए दबाव डाल रहा है तो ये रिवायत नहीं है, ये ऑनर बेस्ड अब्यूज है। ये मामूल लगने लग सकता है लेकिन इज्जत के नाम पर किसी को काबू में रखना, धमकाना या नुकसान पहुंचाना आपके इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। अगर आप या आपके कोई जानने वाला इज्जत के नाम पर होने वाली ज्यादती से मुतासिर है तो मदद हासिल करें। मुफ्त और खुफिया मदद के लिए कर्मा निर्वाणा हेल्पलाइन पर कॉल करें 0800-599-9247 या मजीद मालूमात के लिए karmanirvana.org.uk पर जाएं।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
9: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
10: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
9: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
10: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
9: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
10: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
9: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
10: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
9: टेस्ट भी, वाइब भी।
11: You are listening 97.1 FM.

0: Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
1: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
2: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
1: सलासा ट्यूशन सेंटर?
2: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
1: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
2: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
1: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
3: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
4: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
5: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM।
6: This is a public service announcement.
7: Everybody. The station. That plays
8: foot tapping music.

Better. The radio station for people who love music. 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
1: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
1: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
1: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, यहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
8: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: You are listening 97.1 FM.
10: You are safe. We are playing
11: Fazan 97.1 FM.
12: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा, इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
13: 97.1 FM।
9: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम करदे ने। सोने ते सुहागा ए कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी करदे ने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हां जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 0115 671 36

0: बड़ी ईद की बड़ी खुशियों में आपके साथ साथ मराया रेस्टोरेंट। मराया रेस्टोरेंट की जानिब से तमाम अहले नॉटिंघम को बड़ी ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक। तकबलुल्लाह मिन्ना व मिनकुम।
1: Planning a wedding, reception, or special celebration? Discover Excelsior Nawab, Nottingham's brand new renovated banqueting venue. A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
2: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
1: Fully air-conditioned, with modern kitchen facilities, a spacious foyer reception area, located just 1 mile from Nottingham City Center, at 5-7 Lourdes Road, NG51EL.
2: Excelsior Nawab. Where your special moments become unforgettable.
3: This is a public service announcement.
4: Everybody. The station. That plays
5: foot tapping music.
6: Hazza 97.1 FM.
7: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डैप।

0: It's commercial time.
1: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आएं और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राबता किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन
8: दैट प्लेज
9: फुट टैपिंग म्यूजिक।
10: हजार 97.1 FM।
11: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड
12: एप। यू आर लिस्निंग 97.1 FM।

0: Turn it up. Radio Faza 97.1 FM.
1: Hey, Adam.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकया ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रابطہ करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम

0: तमाम चीजें मौजूद हैं और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
1: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
0: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
3: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM.
4: Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
6: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
7: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही ठहरिए जरा ये कमर्शियल तो सुन ले।
6: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
7: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
6: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
7: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
6: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
7: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
6: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
8: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
6: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
9: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
10: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
10: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
10: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, यहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
11: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG2 4HJ, 100 and 106 Berridge Road.

0: Forest Fields, Nottingham, and the 76LW.
1: Park Foods, jo naam hai Mayarka.
2: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
3: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं
4: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
3: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
4: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
3: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
4: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
3: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
4: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
3: टेस्ट भी, वाइब भी।
5: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब्द के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमराह चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
2: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
3: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
2: सलासा ट्यूशन सेंटर?
3: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
2: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
3: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
2: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
4: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
5: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders.

0: transforming spaces, building trust.
1: आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM.
2: You're listening to 97.1.

0: It's commercial time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: You are staying. We are playing.
12: Fazan 97.1 FM.
13: मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा, अरूज कैसा, जवाल कैसा, मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। इन्हीं मोहब्बतों को समेटे हुए हम हैं आपके साथ
14: 97.1 FM।
15: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ?
16: You are listening to Radio Fazal 97.1 FM. Enjoy songs in mesmerizing voice of legendary singer Kumar Sanu. Only in Dedication Hour. Kumar Sanu.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमराह चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: ओए खुशियाँ मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि ओ हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: है यार करूं।
1: इट्स कमर्शियल टाइम।
2: हेलो नॉटिंघम, हम एक डेडिकेटेड लोकल डॉक्टर और यंग फादर के लिए एक अर्जेंट स्टेम सेल डोनेशन की अपील कर रहे हैं, जो इस समय अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। उन्हें अर्जेंटली एक लाइफ सेविंग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन अफसोस अभी तक उनका साउथ एशियन मैच कहीं नहीं मिला है। हम पूरी साउथ एशियन कम्युनिटी से गुजारिश करते हैं कि प्लीज आगे आए और इस फादर की मदद करें। हम एक डोनर ड्राइव होस्ट कर रहे हैं ICCA सेंटर हकनल रोड पर ऑन वेंसडे 27 मई को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक। हम आपका एक चीक स्वाब लेंगे मुंह के अंदर से और फिर उसे टेस्टिंग के लिए भेज देंगे। हमें उम्मीद है कि आप वेंसडे आकर इस फैमिली की मदद जरूर करेंगे। शुक्रिया।
3: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
4: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
5: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
4: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
5: मुगल बिल्डर्स?
4: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
6: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
4: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
6: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
4: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
7: यू आर लिसनिंग टू रेडियो फाजा ऑन 97.1 FM।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715।
8: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
6: मंगला जो भी मंगना मिल जुगा
7: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।